तेरे जोज विडाना। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हाँ तो दिबिन अवर ना जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुणे आख बखाना। जो सेवै तुझ जी, जन नानक तिन कुरबाना। हर त्यावै हर त्यावै तुझ जी, से जन जुग मैं सुख वासी। से मुकत भये जिन हर त्याया जी, तिन तूटी जमकी फासी। जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी, तिन का पौ सब गवासी। जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याया जी, जिन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, परे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी, हरि अनेके अनेक अनंता। तेरी अनक करें हर पूजा जी, तप तापें जपें बेअंता। तेरे अनेक पढ़े बहु स्मृत शास्त्र जी, कर करे आखट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो पावे मेरे हर भगवंता।

तो निश्चल करता सोई। तुद आपे भावै सोई वरतै जी, तू आपे करें सो होई। तुद आपे सृष्ट सभ्यो पाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सबसे का जानोई। आसा महला चौथा। तू करता सियार मैंडा साई, जो तो पावे सोई थी सी, जो तो दे सोई हो पाई रहाओ। सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनों कृपा करें तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा।

नहीं। जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछुड़या संजोगी मेल। जिसना तू जाना है सोई जिन जाने, हर गुण सद ही आख वखाण। जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहज ही हर नाम समाया।

नानक गुरमुख प्रगट हुए। आसा महला पहला तित सरवरडे पहिले निवासा पाणी पावक तने किया।

रहा हूँ। नाहं जति सती नहीं पड़या, मूर्ख मुग्धा जन्म भया, प्रणवत नानक तिन की शरणा, जिन्तु नाहीं विसरया, आसा महला पंजवा। पई प्रापत मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की ये तेरी बरिया, अवर काज तेरे कतै न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग पवजल तरण कै, जन्म वृथा जात रंग माया कह रहा हूं।

की राखो शर्मा, कभियो बात बेनती चौपाई, हमारी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सभय तुम काव, आप हां दे मोए बचाव, सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सभय करतारा। मोर अच्छा निज कर दे करे, सब बैरन को आ संघरे, पूरन होए हमारी आसा, तोर भजन की रहे प्यासा। तो मैं शाड कोई अवर ना त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं, सेवक सेखे हमारे तारियां, चौन चौन शत्रु हमारे मारियां। आप हां दे मुझे उबरे आए, मरण काल का त्रास निवरे आए, हो जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तु जो करे और अच्छा।

तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर भीषण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, भेद राज ब्रह्मा जू थियो, जवन काल सब लोग सवारा, नमस्कार है ताए हमारा।

नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जने आप सवारी सेवकन को शिव गुण सुख दियो शत्रुन को पल मोह बद कियो काट काट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस्तूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक की पीर पछान काट काट के पट पट की जान जा बुद्ध करख करा कर तारा प्रजा तर तब दे आ पारा जब या करख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत दे तर सब हूं जेते बदन श्रिट सब तार आपे अपने बोझ उचार तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अरे आलम

ना पावत बेदा। ताको कृपा हनन मानत महा मोड़ कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत न पेव। आप अपने बुद्ध है जेती बरणत भिन्न भिन्न तुय तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा कह बेत सजा प्रथम संसार।

आन बहोर रच दीनी। कहूँ फूल राजा हो बैठा, कहूँ समट पयो शंकर कठा। सगरे श्रेठ दिखाए चंपव, आज जुगा स्वरूप से अंपव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखियो बार सिख संघरो। दुष्ट जिते उठवा तुत पाता, सकल मलेश करो रणकाता। जे अस तो जितव शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत है मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो काल को एक बार ते आए हैं, ताके काल निकट नहीं आए हैं। रक्षा होए ताए सब काला, दुष्टिया रिष्ट ट्रै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाय न हरे हो, ताके ताप तन कमो हरे हो। रिद सिद कर्मो सब होई, दुष्ट शाश सके न कोई।

एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सब है, बो भेद कहे हम एक न जानेयो। श्री स्पान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहियो सब तोहे बखानेयो। दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार, बाहें गहे की लाजवास गोविंद दास तुहार। रामकली महला तीजा नंद, एक ओंकार सत गुर प्रसाद, आनंद पया मेरी माए सत गुरु मैं पाया। सत गुर ता पाया सहज सेती, मन वजियां वाधाइयां, राग रतन परवार परियां, शब्द गावणे अइयां। शब्दो ता गावो हरि केरा, मन जिने वसाया, कहे नानक आनंद होआ सत गुरु मैं पाया।

आधारो। साच नाम आधार मेरा, जन भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मन आए वसिया, जन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु विटो, जिस दियां ए वडियाइया। कहे नानक सुनो संतो, शब्द तरूपे आरो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित कर सपागे, कर सपागे शब्द वाजे, कला जित कर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते, काल कंट कुमारिया। तुर करम पाया तुद जिन कौ, से नाम हर कह लागे, कहे नानक ता सुख हुआ, तित कर अनहद वाजे। आनंद सुनो वड पागियो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे, सुने सच्ची बाणी, संत साजन पय सरसे, पूरे गुरते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहया पर पूरे, बिनवंत नानंग गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। मुंदावणी महला पंजवां। थाल विच तिन वस्तु पयो, सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सबसे आधारो। जे को खावे जे को पुंचे, तिसका होय उधारो, ए वस्त तजी न जाई, नित नित राखुर तारो। तम संसार चरण लगत रिये, सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंजवां। तेरा कीता जातो नाही, मैनु जो कीतोई, मैं निर्गुण यारे को गुण नाही, आपे तरस पयो। तरस पया मेहरामत होई, सतगुर सज्जन मिलिया, नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन थीवे हरिया। तरस पया मेहरामत होई, सतगुर सज्जन

एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह, श्री भगवती जी सहाय वार, श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरों श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ध्याइए जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै करनौ नित दावे ताए, सब थाई हुए सहाय दसवां पातशाह। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, सब थाई हुए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी। पंजा प्यारिया चौहान साहबजादियां चालिया मुक्तियां हठियां जपियां तपियां, जिन्हां नाम जपया वंड छकिया। देख चलाई तेग वाही, देख के अंडिठ कीता तिना प्यारिया सच्यारिया दी कमाई दा ध्यान धरके बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दित्ते, बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां, चरखड़ियां ते चढ़े आरिया नाल चराए गए। गुरद्वारिया की सेवा लई कुरबानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सुआसां नाल निभाई, तिना दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारिया दा ध्यान धरके बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेते आवे। चेते आवन का सदका सर्व सुख होवे, जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत। देग तेग फतेह बिरद की पैज, पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय, खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखां नूं सिखी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसाह दान, भरोसा दान, दाना सिर दान, नाम दान। श्री अमृतसर जी दे इशनान चौंकियां, झंडे बुंगे जुगो जोगे अटल, धर्म का जयकार खालसा जी बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उच्ची, मादा राखा आप वाहिगुरु, हे अकाल पुरख अपने पंथ देस दा सहाई दा तार जीओ। श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे, जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है, खुले दर्शन दी दार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो, हे निमाणिया दे माण। निताणिया दे ताण, निवटिया दी ओट, सच्चे पिता वाहिगुरु आप जी दे पावन पवित्र चरण कमलां पास। अरदास बेनती जोदड़ी प्रार्थना है पातशाह जीओ,

ले। सोत धारा स्यों प्रीत लगाए, एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, ते मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाट कीरत की, गुरु रामदास राखो शरणाई। धन वाहिगुरु साहब जी, राग सूही संत महला पहला, घर पहला, एक ओंकार सत गुर प्रसाद। भार जोबन मैं मत, पेयड़ करपा होनी, बलराम जियो। मैली अवगण चेत, बिन गोर गुण ना समावनी, बलराम जियो। भार जोबन मैं मत, पेयड़ करपा होनी, बलराम जियो। मैली अवगण चेत, बिन गोर गुण ना समावनी, बलराम जियो। गुणसार ना जानी, परम पुला

वार कार दार दर्शन नहीं जाता, पैर का सहज ना पाया। सतगुर पूछ ना मार्ग चाली, सूती रहन बिहानी। नानक बाल तन रांडे पा, बिन पैर धन कुमलाणी। बाबा मैं वर दे, मैं हर वर पावे तिस की, बलराम जियो। रब रहया जुग चार, तिर भवन बाणी जिस की, बलराम जियो। तिर भवन कंत रवै सोहागण, अवगणवंती दूरे। जैसी आसा तैसी मनसा, पूर रहया भर पूरे। हर की नार सो सर्ब सुहागण, रांड ना मैले वैसे। नानक मैं वार साचा पावे,

किरत पया करतै कर पाया मेट न सकै कोई। जानी नाओ नरह ने केवल राव रहे आते हैं लोई। माए निरासी रोए विशुन्नी बाली बालै हिते। नानक साच शब्द सुख महली गुर चरणी प्रभ चेते। बाबुल दितड़ी दूर ना आवै कर पेय बलराम जियो। रहसी वेख हदूर पेर रावी कर सोहिय बलराम जियो। साचे पिर लोड़ी प्रीतम जोड़ी मत पूरी प्रधाने। संजोगी मेला थान सुहेला गुणवंती गुर ज्ञाने। सत संतोख सदा सच पल्ले सच बोले पिर पाए। नानक विछुड़ ना दुख पाए गुरमत अंक समाए। सत संतोख सदा सच पल्ले सच बोले पिर पाए। नानक विछुड़ ना दुख पाए गुरमत अंक समाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु प्यारे गुरु सवारे अति सत्कार योग सतसंगी जनो वडभागे हाँ जिथे आप जीआं ने संध्या समय नूं मुख रखदे आं शब्द चौंकी उपरंत सोदार रहिराज साहिब जी की पावन बाणी के पाठ सरवण कीते ने। सरबादे भले की अरदास उपरंत सतगुरां ने जो पावन मुख वाक की दात बख्शिश की है पवित्र उपदेश आप संगतां ने बड़े प्रेम अदब सत्कार सहित बड़ी एकाग्रता नाल बैठ के सरवण कीते ने। गरीब नवाज कृपा करन सभना नूं दरों घरों गुरसिखी जीवन नाम दान की दात दे के नवाजन। कदम कदम लेखे विच लाउण चढ़दी कला बख्शिश करन। समा है गुरबाणी शब्द कीर्तन दा। सेवा निभाउणगे बहुत ही सत्कार योग भाई हरजीत सिंह जी चमक 6:25 तक आप संगतां ने बड़े प्रेम अदब सत्कार सहित बैठ के सरवण करन दी कृपालता करनी जी। भुल्लां चुक्कां दी खिमा आप संगतां दा धन्नवाद। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: परम सत्कार जो गुरु प्यारी खालसा सतसंग जी, बहुत बड़भागे हो जिंदगी दे कुछ सवास श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की चरण शरण में बैठ के तुसी बतीत कर रहे हो। सतगुरु कृपा करन, तुहाडा कदम कदम चलिया होया, गुरु की गोलक विच किरत कमाई विचो पाया तिल फुल, तुहाडियां कीतियां हुई अरदासां श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अपने दर कर प्रवान करन, दरों करों चढ़दी कला वाला जीवन सतगुर बख्शिश करे। आओ सारी संगत चुकाओ सीस, करो रसना पवित्र, बख्शो आग्या, बुलाओ फतेह।
1: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
0: गुरु प्यार वालियो, गुरु अर्जन देव महाराज जी दे सुपुत्र ने गुरु हरगोबिंद साहब महाराज, जिन्हां ने मौके दी सरकार नाल चार जंग लड़े, अकाल तख्त की रचना की, जून महीने 1609 अकाल तख्त की रचना हुई। इन्हां दे घर पांच पुत ते एक धी पैदा हुई। सब तो वड्डे सुपुत्र दा नां है बाबा गुरदत्ता जी। इहदा चेहरा मोहरा गुरु नानक देव महाराज जी दे नाल रलदा मिलदा सी।

आवै जाहें अनेक मर मर जन्म ते बिन बूझे सब वाद जोनी भरम ते जिन को भय दयाल तिन साधु संग पया अमृत हर का नाम तिने जने जप लया खोजै कोट असंख बहुत अनंत के जिस बुझाए आप नेड़ा तिस है।

गुण गामा दिन रात, नानक चाओ ए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु प्यारे गुरु सवारे अति सत्कार योग सतसंगी जिन्हां वड़ पा गए जिथे आप जिया ने संध्या समय में मुख रखद्या ढाडे जिथे पासों इतिहास श्रवण किया है। सरबत दे भले की अरदास उपरंत सतगुरां ने जो पावन मुख वाग की दात बख्शिश की है पवित्र उपदेश आप संगतां ने श्रवण किए ने हुण गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन स्वरूपां की सेवा संभाल सोहल से पावन बाणी के पाठ होणगे। समाप्ति तो उपरंत आप संगतां ने कड़ा प्रसाद की देख लिया कि गुरु के लंगर विचों प्रशादा छक के जाने की कृपालता करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सोहिला राग गौड़ी दीप की महला पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद जय कर किर तकिए करते का हो विचारो तित कर गाओ सोहिला सवेरे सृजनहार तुम गावो मेरे नृपो का सोहिला हूँ वारे जित सोहिले सदा सुख हो रहाओ नित नित जी अड़े संभालियन देखेगा देवनहार त्रिदाने कीमत ना पवे तिस दाते कौन शुमार संबत साहा लिखिया मिल कर पावो तेल देहो सज्जन आसी सड़िया ज्यों होवे साहब सिंह मेल घर घर हो पाहुचा सदड़े नित पवन सदन हारा समरिये नानक से दे अवन राग समाला पहला छे कर छे गुर छे उपदेश गुर गुरे को वैसे अनेक बाबा जय कर करते कीरत होए सो कर रख वड़ाई तो रहा विसोए चसियां घड़ियां पहरां थिती वारी मां होवा सूरज को रोते अनेक नानक करते के वेस राग तना श्री महला पहला गगन मैथाल राव चांदीपक बने तारका मंडल जनक मोती तू माल्याण लो पवन चवरो करे सकल बन राय फूलंत ज्योति कैसी आरती होए पाव खंडना तेरी आरती अनहत

का शब्द वजंत पेरी रहा। सहस्तव नयन नन नयन है तो एक सहस मूर्त, नना एक तो ही सहस पद विमाल, नन एक पद गंध बिन सहस्तव गंध चलत मोही। सब में जोत जोत है सोए, तिस दे चानन सब में चानन होए, गुरसाखी जोत प्रगट होए, जो तिस पावे सो आरती होए। हर चरण कमल मकरंद, लोभित मनोवंदनो मोहे आही प्यासा, कृपा जल दे नानक सारंग को, हो जाते तेरे नाए वासारा। गौड़ी पूर्वी महला चौथा। काम क्रोध नगर बो भरिया, मिल साधु खंडल खंडा है, पूर्व लिखित लिखे गुर पाया, मन हार लियो मंडल मंडा है। कर साधु अंजलि पुन वड्डा है, कर डंडोत पुन वड्डा है रहाओ। साकत हर साधना जानिया, तने अंतर होमे कंडा है। ज्यों ज्यों चले चुभे दुख पावे, जमकाल सह सर डंडा है। हर जन हर हर नाम समान, दुख जन मरण पव खंडा है। अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर, मोशोभ खंड ब्रह्मंडा है। हम गरीब मसकीन प्रभ तेरे, हर राख राख वड वड्डा है। जन नानक नामा धार टेक है, हर नामे ही सुख मंडा है। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, करो बिनंती सुनो मेरे मिता, संटल की बेला। इहां खाट चलो हर लाहा, आगे बसन सुहेला, औद घटे दिन सरैणा रे, मन गुर मिलका सवार रहाओ। ए संसार बिकार सहसे मैं, तरियो ब्रह्म ज्ञानी, जिसह जगाए पियावे एह रस, अकथ कथा तिन जानी, जाको आए सोई बिहा, जो हर गुर ते मने बसेरा। निज घर महल पावो सुख सहजे, बोहर ना होए गो फेरा, अंतर जामी पुरख विधाते, श्रद्धा मन की पूरे। नानक दास है सुख मांगे, मोको कर संतन की

पौड़ी सच्चा साहिब एक तू जिनी सचो सच वरताया जिस तू दे मिले सच तिनी सच कमाया सतगुरु मिलिया सच पै जिन कै हृदय सच बसाया मूरख सच ना जाननी मनमुखी जन्म कुवाया विच दुनिया काहे आया विच दुनिया।

राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ वैष्णहार कूड़ सोना कूड़ रूपा कूड़ पैनहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपा पार कूड़ मिया कूड़ बीबी खप होए खार कूड़ कूड़े ने हो लगा विसरिया करता किस नाल की जय दोस्त थी सब जग चलनहार कूड़ मिठा कूड़ माख्यों कूड़ डोबै पूर नानक विखाणा बेनती तुझ बा

0: अंग मेल शरीर का एक रथ एक रथ बाहु जुग जुग फेर वटाई है ज्ञानी बुझताए सतजुग रात संतोख का धर्म गै रथ वाहो तरे ते रथ जते का जोर गै रथ वाहो द्वापर रथ पे काल सत गै रथ वाहो काल जुग रथ अग्न का कूड़ गै रथ वाहो महला पहला।
1: साम कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छे साज रहे सब को सच समावे रे कह रहे प्रभुर राम नाम देवा महसूर नाए लया प्राश्त जाए नानक तो मुख अंतर पाए जुज मह जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जादम पया पार जात गोपी ले आया बिद्रावन में रंग किया

पावड़ी नानक अंतरा जापनी हर ताके पारा वार आप कराए साक्ति फिर आप कराए मार एक ना गली जंजीरियां एक तुरी चढ़े बिस्यार आप कराए करे आप हो कैसो करी पुकार।

तुमरे कृपा में सुख कनेरे कोई न जाने उचते ऊचा भगवंत सगल समगरी तुमरे तुमते हो ऐसो तुमरी गत मित नानक दास तुमरी गत मित तुम नानक दास बोलो जी सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु जी अको ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगत जी सहाय वार श्री भगत जी की पातशाही दसवें प्रथम भगवती सिमरक है गुरु नानक लिंग ध्याए फिरंगत गुरते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिठ है सब दुख जाय तेग बहादुर सिमर कर नौन दयावेताए सब ताई हुई सहाय दसवें पातशाह तन तन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ओ सब ताई हुई सहाय दसवें पातशाहियों की जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे पवित्र पाठ दीदार अंतर खालसे बोलो जी वाहे पंजा प्यारियां चौ सब जादियां चालियां मुगतियां अठियां जपियां तपियां शहीद सिंघां सिंघणियां जिन्हां नाम जपया वंड छकिया देग चलाई तेग वाई दे केंद्र कीता तिन्हां गुरमां प्यारियां सचारियां दी कमाई दा ध्यांतर खालसे सबोलो जी वाहे जिन्हां सिंघां सिंघणियां धर्म हिस्से दिते बांध बांध कटवाए चरखड़ियां ते चढ़े आरिया नाल तन चरवाए उबल दियां देगां विच उबाले के खोपरियां लुहाईयां गुरुद्वारियां दी सेवा संभाल ले कुरबानियां कीतियां तेरे भाणे नूं मिठा करके मन्या असहे दे कहिआ सार दे शहीद होए सिकिद के सांस वास सगन वाई तरमनी हारिया तिन्हां समूह शहीद सिंघां सिंघणियां दी कमाई दा ध्यान तर खालसे सबोलो जी वाहे पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारिया जी का ध्यान तर खालसे सबोलो जी वाहे प्रथम खालसे जी की अरदास है जी सरबत खालसे जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावे चेतावन का सदका सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रचे रियाज ते फतेह बिरद की पैज पंथ की जी श्री साहेब जी सहाय खालसे जी के बोल वाले खालसे से बोलो जी वाह सिखा नू सिखी दान केस दान रह दान विवेक दान वसाह दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी के स्नान चौंकियां झंडे बोंगे जुगो जुगो टल धर्म का जयकार खालसे जी के बोल वाले खालसे से बोलो जी वाह सिखा दा मन नीवा मत उची मादे राखे आप अकाल पुरख अंतर जामे गुरु गरीब निवास जी पातशाह पम दे सदा सहाय दर पिता जी ओ श्री ननकाणा साहब होर गुरुद्वारे गुरुधामां चो जिन्हां तों पंथ नूं छोड़िया गया सेवा संभाल अपने खालसा जी नूं बख्शो जी निमाणियां दे माण नताणियां दे ताण ने उल्टियां दी औण आसरन दे आसरे धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पातशाह जी आप जी दा कोटान कोट शुक्र आप जी दी पार बख्श रहमत कृपा दा सकामत तले शब्द चौंकी विच आपदी इलाही बाणी दे पाठ उपरंत आसक वार दे कीर्तन जी भोग जी की अरदास भुल चो माफ करनी सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहेवंद होवन सरबत संगतां दी हाजरी तेल फुल बैठावां अपने दर ते प्रवान करनियां सितम मेहर भरिया तकड़ा तंदुरुस्तियां बख्शणियां परिवारां विच सुख वरतौणा सरबत संगतां दे कारोबार जी बरकतां दरों करो सिखी सिद्ध भरोसा नामदान बख्शना पंथ दे सत्ते मेर भरिया हथकड़ा पवित्र हजूरी विच कड़ा प्रसाद देगा हाजरा दार प्रवान होवै प्रवान दे संग वरताउण दी आग्या बख्शो मेहर करो पवित्र हुक्मनामा बख्श के निहाल करो जी सही गुरमुख प्यारे मिलो जिन्हां मिलिया तेरा नाम चेता आवे नानक नाम चढ़दी करा तेरे भाणे सरबत दा भला
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ।

तुमरी शरण, तुम्हारी आशा, तुम ही सज्जन सुहेले, राखू राखनहार दयाला, नानक करके गोले, राखू राखनहार

नाम बिना सब कूड़ गाली होचिया, नाम निधान अपार भगता मन वसै। जन्म मरण मोह दुख साधु संग नसै रहाउ। मोहे बाद अहंकार सर पर रुन्या, सुख न पायन मूल नाम विशुन्या। मेरी मेरी तार बंधन बंधिया, नरक स्वर्ग अवतार माया धंधिया। सोधत सोधत सोध तत् विचारिया, नाम बिना सुख नाहे सर प्रहारिया। आव है जाहे अनेक मर मर जन्मते, बिन बूझे सबवाद जोनि परमते। जिनको भये दयाल तिन साधु संग पिया, अमृत हर का नाम तिनी जनी जप लिया। कुछ है कूट असंख बहुत अनंत के, जिस मुझाई आप निड़ा तिस है।

विसर नाहीं दातार अपना नाम देहो गुण गावा दिन रात नानक चाओ एहो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी गुरु ग्रीवनवास मलार महला तीजा अष्टपदी कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद

शब्द सुनाए। मन मेरे हर हर सेवक निधान, गुर कृपा ते हर धन पाइय, अंधन लागे सहज ध्यान रहाउ, बिन पिर कामन।

गुरमुख कामण मणिया सिंगारू शब्दे पिर राखिया युरतारू एक पछाणे होमे मारू शोभावंती कहिए नार बिन गुरदाते किने न पाया मन मुख लोभ दूजे लोभाया ऐसे ज्ञानी बुझो कोए बिन गुर भेटे मुक्त न होए कह कह कहन कहे सब कोए बिन मन मुए भगत न होए ज्ञान मति कमल प्रगास तित घट नामे नाम निवास होमे भगत करी सब कोए ना मन भीजे ना सुख होए कह कह कहन आप जाना जानाए बिरथी भगत सब जन्म गवाए से भगत सतगुर मन पाए अम दिन नाम रहे लिवलाए सद ही नाम वेखे हजूर गुर कै शब्द रिया भरपूर आपे मक्षे दे प्यार होमै रोग वड्डा संसार गुर कृपा ते एह रोग जाए नानक साचे सच समाए राग मलार संत महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रीतम प्रेम भगत के दाते अपने जन संगराते जन संगराते दिन सराते एक निमुख मनो ना बीसरै गोपाल गुण निध सदा संगे सर्व गुण जगदीश्वरै मन मोहे लीना चरण संगे नाम रस मन जन माते नानक प्रीतम कृपाल सदो किने कोट मदे जाते प्रीतम तेरी गत अगामे पारे महापतत तुम तारे पतत पावन भगत वशल कृपा सिंध स्वामिया संत संगे भजन संगे रहो सदा अंतर्यामिया कोट जन्म परमंत जोनी ते नाम सिमरत तारे नानक दर्श प्या सुहर जियो आप लिहो सुमारे हर चरण कमल मन लीना प्रव जल जन तेरे मीना जल मीन प्रव जियो एक तू है पहनया न जानी है गह पुजा लेवो नाम देवो तो प्रसादी मानी है पाज साध संगे एक रंगे कृपाल गोविंद दीना अनाथ नीच सरनाए नानक करमिया अपना कीना आपस को आप मिलाया परम पंजन वर राया आचार्य स्वामी अंतर जामी मिले गुण निध प्यारिया महामंगल सुख उपजै गोबिंद गुण नित सारिया मिल संग सूहै देख मोहे पुरब लिखिया पाया बिनवंत नानक शरण तिन की जिनी हर हर ध्याया बार मलार की महला पहला राणा राणे कलाश तथा माल दे की तुन एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला तीजा गुर मिलिए मन रसिए जम बुठे तरन सिंगार सब दिसे हरियावली सर परे सुबरताल

उजाला। दसेव तारी राम राजा आया, दैता मारे ताए हुक्म सुबाया। ईश महेश्वर सेव तिनी अंत न पाया, सचे कीमत पाए तख्त रचाया। दुनिया धंधे लाए आप छपाया, धर्म कराए कर्म तुरों फरमाया। श्लोक महला दूजा।

आप सदाई छुट्टी है आपे बख्शनहार आपे विखै सुनी आप सब सदे आधार सब मैं एक वर्तदा सिर सिर करी विचार गुरमुख आप विचारी है लगे सच प्यार नानक किसनों आखिए आपे देवनहार सलोक महला तीजा बाविहा जगत है मत को भरम भुलाए एह बविहा पशु है इसनू बूझण ना है अमृत हर का नाम है जित पीते तिख जाए नान गुरमुख जिन पिया तिन बौड़ ना लागी आए महला तीजा मलार शीतल राग है हर त्याई शांत होए हर जीव अपनी कृपा करे ता वरती सब लोए बुठे जिया जुगत है तरणी नौ सिंगार होए नानक एहो जगत सब जल है जल ही ते सब कोए गुर प्रसादी को बिरला बूजै सो जन मुक्त सदा होए पौड़ी सच्चा बे प्रवाह इको तू धनी तू सब किस आपे आप दूजे किस गणी

अपना आए तिस आया तिस गणी जे होमें विचों जाए ते कहे गणत गणी मन मुख मुहिम गुबार ज्यो भुला मंज मणी कटे पाप असंख नाव एक कणी श्लोक महला तीजा बावीहा खसमे का महल न जाणही महल देख अरदास अरदास पाए अपने भाणे बहुता बोले बोलिया था ए ना पाए खसम वड्डा दा तार है जो इच्छा सो फल पाए बावीहा क्या बापुड़ा जगते की तिख जाही महला तीजा बावीहा भिन्नी रहन बोलिया सहजे सच संभाई निव जल मेरा जीव है जल बन रहन न जाए गुर शब्दी जल पाई है बिचों जाप गवाए नानक जिस बिन चसा न जीवंदी सो सत गुरु दिया मिलाए पौड़ी खंड पताल असंख मैं गणत न होई तू करता गोविंद तुद सिरजी तुदै गोई लख चौरासी मेदनी तुझी ते होई एक राजे खान मलूक कह कहावै कोई एक सांस दावै सांच धन दूजे पत खोई एक दाते एक मंगते सबना सिर सोई बिन नावै बाजारिया पिहावल होई

प्राण। तू सुखदाता बेअंत है गुणदाता निदान, नानक गुरमुख बख्श ले अंत बेली होए भगवान। पौड़ी

सगल संग हमको बन आई। जो प्रभु की नो सो पल मान्यो, एस मत साधु तै पाई। सब महर अब रहया प्रभु एक, पेख पेख नानक बिकसाई। कानड़ा महला पंजमा। ठाकुर जीओ तुहारो परना, मान महत तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी ओट तुम्हारी सरना रहाओ। तुम्हारी आस भरोसा तुम्हारा, तुम्हारा नाम हृदय ले तरना। तुमरो बल तुम संग सहेले, जो जो कहो सोई सोई करना। तुमरी दया में आसक पावो, हो किरपाल ता पवजल तरना। अबे दान नाम हर पायो, सिर डार्यो नानक संत चरना। कानड़ा महला पंजमा। साध सरन चरन चित लाया, सुपन की बात सुनी पेकी। सुपना नाम मंत्र सत गुरु दृढ़ाया रहाओ। नह त्रिवतानो राज जो बन, तन बहर बहर फिर ताया। सुख पाया त्रिसना सब बुझी है, सांत पाई गुन गाया। बिन बूझे पशु की न्याई, परम मोहे व्याप्यो माया। साध संग जम जेवरी काटी, नानक सहज समाया। कानड़ा महला पंजमा। हर के चन हिरदे गाए, शीतला सुख सांत मूर्त, सिमर सिमर नित त्याए रहाओ। सगल आस होत पूर्ण, कोट जन्म दुख जाए। पुन दान अनेक क्रिया, साधु संग समाए। ताप संताप मिटे नानक, बाहुड़ काल ना खाए। कानड़ा महला पंजमा। कार तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कतिए सतसंग प्रभ ज्ञान, पूर्ण परम ज्योत परमेश्वर। सिमरत पाइय मान रहाओ। आवत जात रहे सर्वनासे, सिमरत साधु संग। पतत पनीत हो हे खिन पीतर, पार ब्रह्म कै रंगा। जो जो कते सुने हर कीर्तन, ताकि दुर्मत नास। सगल मनोरथ पावे, नानक पूर्ण होवे आस। कानड़ा महला पंजमा। साध संगत निधार को नाम, संग सहाई जी कै काम रहाओ। संत रेन नित मंजन करे, जन्म जन्म के किल बिख हरै। संत जना की ऊंची बानी, सिमर सिमर तरे नानक प्राणी। कानड़ा महला पंजमा। साधु हर हरे गुण गाए, मान तन धन प्राण प्रभ कै सिमरत। सिमरत दुख जाए रहाओ। ईत उत कहां लो बाव है, एक सियो मन लाए। महापवित्र संत आसन मिल संग, गोविंद ते आए। सगल त्याग सरने आयो, नानक ले हो मिलाए। कानड़ा महला पंजमा। पेक पेक बिकसाओ, साजन प्रभ अपना एकांत रहाओ। आन दा सुख सहज मूर्त, तिस आन नाही पाता। सिमरत एक बार हर हर मिट कोट, कसम मल जात। गुण रवंद रमंत, दुख ना से रिद पयंत सांत। अमृता रस पियो रसना, नानक हर रंग रात। कानड़ा महला पंजमा। साजना संत आओ मेरे रहाओ। आन दा गुण गाए मंगल कसमला, मिट जाहे परेरे। संत चरण तरो माते चांदना, ग्रह होए अंधेरे। संत प्रसाद कमल बिकसे, गोबिंद पजो पेख नेरे।
ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਪਾਏ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਾਨਕ ਓ ਬੇਰੈ। ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰੀ, ਮੋਹ ਮਾਨ ਤੋਂ ਭ੍ਰਮ ਰੱਖ ਲੀਜੇ ਕਾਟ ਬੇਰੀ ਰਹਾਉ। ਬੂਢਤ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਉਦਰੇ ਹਰ ਸਿਮਰ ਰਤਨਾਗਰ, ਸੀਤਲਾ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਪੂਰਨੋ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਤਾਰਨ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਪਤਤ ਉਧਾਰਨ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਦੁਖ ਕਰ ਪਾਇਓ, ਸੁਖੀ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਓ। ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਧਨ ਓ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਸੰਗ ਲਾਗੀ, ਕੋਟ ਜਾਪ ਤਾਪ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਆਏ ਮਿਲੇ ਪੂਰਨ ਬੜਭਾਗੀ ਰਹਾਉ। ਮੋਹਿਆ ਨਾਥ ਦਾਸ ਜਨ ਤੇਰਾ, ਅਵਰ ਓਟ ਸਗਲੀ ਮੋਹੇ ਤਿਆਗੀ, ਭੌਰ ਭਰਮ ਕਾਟੇ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਮਿਲ ਸੋਵਤ ਜਾਗੀ। ਤੂੰ ਅਥਾਤ ਬਡੋ ਸਵਾਮੀ, ਕਿਰਪਾ ਸਿਧ ਪੂਰਨ ਰਤਨਾਗੀ, ਨਾਨਕ ਜਾਚਕ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮੰਗੇ, ਮਸਤਕ ਆਨ ਧਰਿਓ ਪ੍ਰਭ ਪਾਗੀ। ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕੁਚਿਲ ਕਠੋਰ ਕਪਟ ਕਾਮੀ, ਜੋ ਜਾਨ ਹੈ ਤਿਉਹ ਤਾਰ ਸਵਾਮੀ ਰਹਾਉ। ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਸਰਨ ਜੋਗ, ਤੂੰ ਰਾਖੇ ਆਪਣੀ ਕਲ ਧਾਰ, ਜਾਪ ਤਾਪ ਨਿਮ ਸੁਚ ਸੰਜਮ ਨਾਹੀ, ਇਨ ਬਿਧੇ ਛੁਟਕਾਰ, ਗਰਤ ਘੋਰ ਅੰਧ ਤੇ ਕਾਢੋ, ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਨਿਹਾਰ। ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਘਰ ਚੌਥਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਨਾਰਾਇਣ ਨਰਪਤ ਨਮਸਕਾਰੇ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੇ ਰਹਾਉ।

करुण कृपाल गोपाल दीन बंद नानक उदर सरन परिया कानड़ा महला पंजमा जीन प्राण मान दाता हर बिसरते ही आन राहु गोबिंद त्याग आन लागे अमृत डार भूम पाग बिखे रस स्यों आ शक्त मूड़े काहे सुख मान काम क्रोध लोभ व्याप्यो जन्म ही की खान पतत पावन सरण आयो उदर नानक जान कानड़ा महला पंजमा अब लोको राम को मुखार बिंद खोजत खोजत रत्न पायो बिसरी सब चिंदर हाओ चरण कमल हृदय तारी उतरिया दुख मंद राज तन परवार मेरे सर्व सो गोबिंद साध संगम लाभ पायो नानक फिर नाम रंद कानड़ा महला पंजमा घर पंजमा एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रभ पूजो नाम अधारद गुर सतगुर चरणी लाग हर पाव मां मन अगाध जग जी तो हो गुर कृपा दरहाओ अनक पूजा मैं बहुत विदखो जी सा पूजा जे हर पावास माटी की ये पुत्री जोरी क्या ये कर्म कमाउस प्रभ पाह पकन जिस मार्ग पावो सो तुद जंत मिलास अवर ओट में कोई न सूझे एक हर की ओट में आस क्या दीन करे अरदास जो सब कट प्रभु निवास प्रभ चरणन की मन प्यास जन नानक दास कहियत है तुमरा हाओ बल बल सद बल जास कांदरा महला पंजमा कर शिवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जगत उधार नाम प्यारे प्रिय तेरे नामृद नाम नदान हर की रे हर रंग रंग रंग अनुपे राय काहे रे मन मोहे मगन रह नैनो देख साध दरसे रह सो पावे जिस लिखत ले रह राहो सेवो साध संत चरने रह बंशो तूर पवित्र करे रह हर सर समझन मैल कटे रह सा सा सत्यावो मुख नहीं मोरे किस संग ना चले लाख करो रह प्रभ जी को नाम अंत पुकरो रह मनसा मान एक निरंकार सगल त्यागो पाउ दूजे राय कबन कहां हो गुण प्रिय तेरे बरना स्वाकू एक टोले राय दर्शन प्यास बहुत मन मेरा मिल नानक देव जगत गुरु के राय कानड़ा महला पंजमा ऐसी कौन विदे दर्शन परसना रहा आस प्यास सफल मूरत मग ही ओ दर्शना दीन लीन प्यास मीन हर संतना की रेन यो अर्प देन प्रभ पै है कृपेन मान मो त्याग छोड्यो तो नानक हर जियो भेटना कालड़ा महला पंजमा रंगा रंग रंगन की रंगा कीट हंस पूरन सब संगा राव बरतने वतीरत सहत गंगा जल हीवत भूखे अर नंगा पूरा चारत करत मेलंगा चक्र कर्म तिलक खाटंगा दर्शन भेट बिन सतसंगा हट नृह ग्रह अतिरहत बेटंगा हरोग ब्याप चूके ना पंगा काम क्रोध यत तृष्ण जरंगा सो मुक्त नानक जिस सतगुर चंगा कानड़ा महला पंजमा कर सतमा एक ओंकार सतगुर प्रसाद देख बूझ गई मन साध जना पंच पांगे चोर सहजे सो खैनो हरे गुण गावती गावती गावती दर्स प्यास रहाओ जैसी करी प्रभ मोस्यों मोस्यों ऐसी हो कैसे करो हियो तुम्हारे बल बले बल बले बल गई पहले पै संत पाए ते आए प्रीत लाए प्रभ थान ते रोके रोजत जंतन कर विचार अनकदास कीरत करह तुम्हारी सोई मिलो जो भाव तो जन नानक ठाकर रहो समाए एक तू ही कानड़ा महला पंजमा कर अठमा एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्यागी अगमान मान पेकता दयाल लाल हां हां मन चरण रेन राव हर संत मंत्र

है उन्हां को जम की तलब ना होई। प्रभाती महला पहला, जाके रूप नाही जात नाही नाही मुख मासा, सतगुर मिले निरंजन पाया तेरे नाम है निवासा। औ दूसै जे तत् विचार जाते फिर ना आवो सहसा रहाओ। जा कै कर्म नाही धर्म नाही नाही सुच माला, शिव ज्योत कन्हो बुद्ध पाई सत गुरु रखवाला। जा कै ब्रत नाही नेम नाही नाही बक पाई, गत अवगत की चिंत नाही सत गुरु फुरमाई। जा कै आस नाही निराश नाही चित सुरत समझाई, तंत को परम तंत मिलिया नानका बुद्ध पाई। प्रभाती महला पहला, ता का कहिया दर परवान बिक अमृत दुए समकर, जान क्या कहिए सरबे रहिया समाए, जो किछ वरतै सब तेरी रजाए रहाओ। प्रगटी जो चुका अभिमान सतगुर दिया अमृत नाम, कलमे आया सो जन जान साची दरगै पावै मान। कहना सुनना कथ कर जाए, कथनी बदनी नानक जल जाए। प्रभाती महला पहला, अमृत नीर ज्ञान मन मजन अड़सठ, तीर्थ संग गहे गुरुप देह जवाहर माणक, सेवे सिख सो खोजल है। गुर समान तीर्थ नहीं कोई, सर संतोख तास गुर होए रहाओ। गुर दरियाओ सदा जल निर्मल, मिलिया द्रुमत मैल हरै, सदगुर पाइय पूरा नावन पशु प्रेतो देव करै। रता सजनाम तल ही अल सो गुर परमल कहिए, जाकी वास बनास्पत सौरे ता चरण लिव रही है। गुरमुख जीव प्राण उपजे, गुरमुख शिव कर जाइए, गुरमुख नानक सच समाइए, गुरमुख निज पद पाइए। प्रभाती महला पहला, गुर प्रसादी विद्या विचारै, पड़ पड़ पावै मान, आपा मदे आप प्रगासिया पाया अमृत नाम। करता तू मेरा जजमान, इक दखेणा हो तै पहे मांगो, देहे अपना नाम रहाओ। पंच तस्कर तावत राखे चूका मन अभिमान, दिष्ट बिकारी दुर्मत पागी ऐसा ब्रह्म ज्ञान। जल सत चावल दया कणक कर प्राप्त पाती तान, दूध क्रम संतो कियो कर ऐसा मांगो दान। खीमा तीर्ज कर गौ लवेरी सेजे बछरा खीर पिए, सिफत श्रम का कपड़ा मांगो हर गुण नानक रबत रहै। प्रभाती महला पहला, आवत किने न राख्या जावत क्यों राख्या, जाए जिसते हुआ सोई पर जाने जा उसी माहे समाए। तू है वाहो तेरी रजाए, जो कुछ करे सोई पर होए बा, अवर ना करना जाए रहाओ। जैसे हरहट की माला टिंड लगत है, एक सखनी होर फिर परियत है, तैसो ही एहो खेल खसम का ज्यों उसकी वड्याई। सुरती कै मार्ग चल कै उल्टी नदर प्रगासी, मन विचार देख ब्रह्म ज्ञानी कौन गिरही कौन उदासी। जिसकी आसा तिस ही सौंप कै इहो रहिया निरपाण, जिसते हुआ सोई करमान्या नानक गिरही उदासी सो परवान। प्रभाती महला पहला, दिष्ट बेकारी बंधन बांधै हो तिसकै बल जाई, पाप उनकी सार ना जाने पूला फिरै अजाई। बोलो सच नाम करतार फुन बोहड़ ना आवण वार रहाओ। ऊंचा ते फुन नीच करत है नीच करै सुल्तान, जिनी जान सो जानिया जगते पूरे परवान। ता को समझावण जाइए जे को पूला होई, आपे खेल करे सब करता ऐसा बूझै कोई। नाव प्रभातै शब्द त्याइए छोड़ो दुनी प्रीता, प्रणवत नानक दासन दासा जग हारिया तिन जीता। प्रभाती महला पहला, मन माया मन ताया मन पंखी आकाश, तस्कर शब्द निवारिया नगर बुठा सा बास। जा तू राखे राख लेहे साब तू हो वैरास, ऐसा नावरतन निध मेरा गुरमत देहे लगो पग तेरे रहाओ। मन जोगी मन पोगिया मन मूर्ख गावार, मन दाता मन मंगता मन सिर गुर करतार, पंच मार सुख पाया ऐसा ब्रह्म विचार। कट कट एक वखाणिय कहो ना देखिया जाए, खोटो पुठो रालिय बिन ना वै पत जाए। जा तू मिले ता मिल रहा जा तेरी होए रजाए। जा जन्म नह पूछ

0: दुख दारू सुख रोग पे आजा सुख तामना होई। तू करता करना मैं नहीं जाहु करी ना होई। मलेहारी कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाई लख्या रहा। जात मैं जोत जोत मैं जाता अकल कला भरपूर रहा। तू सच्चा साहिब शिव सवाले जिन कीती सो पार पिया। कहो नानक करते कियां बातां जो किश करना सो कर रहा।
1: सूदर राग आसा महला।

ना को होए। जे वड़े आप ते वड़ तेरी दात, जेन देन करके कीती रात। खसम विसारें ते कम जात, नानक नावे बासनात। राग गुजरी महला चौथा। हर के जन सतगुर सत पुरखा, बिनो करौ गुर पास। हम कीरे किरम सतगुर शरणाई, कर दया नाम प्रगाश। मेरे मीत गुरदेव मोको राम नाम प्रगाश। गुरमत नाम मेरा प्राण सुखाई, हर कीरत हमरी रह रास रहाओ। हर जन के वट पाग वडेरे, जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास। हर हर नाम मिले त्रिपता सै, मिल संगत गुण प्रगाश। जिन हर हर हर रस नाम ना पाया, ते पागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। तन तन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रगाश। राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन चित में उदम। जाया हर हर जीओ परया, सैल पत्थर में जंत्यो पाए। ताका रिजक आगे कर धरिया।

रहा हूं। जनन पिता लोक सोत बनता, कोई ना केस की धरया, सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर, काहे मान पौ करया। उड़े उड़े आवे सै कोसा, तिस पाछे बचरे शरया, तन कवन खलावे कवन चुगावे, मन मैं सिमरन करया। सब निधान दस अट सिधान, ठाकुर कर तल तरिया, जन नानक बाल बाल साध बल जाइए, तेरा अंत न पार आवरिया। राग अस